संत के दुखी कथा काज न पहुँचे, संत के दुखी को उद्यान पहमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिनाऊ मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अब

मंत्रांतरी सुहाओ नेत्रहु पेख दर्श सुख होय। मन बिगसा साध चरण तोय, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को उपावै संग, एक बस्त दीजा करमाया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकी उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए, प्रभ बखसंद दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्ब घटा करत प्रतपाल, आदि पुरख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावै मन हीत। हम निर्गुणी यार नीच अजान, नानक तुमरी सरन पुरख भगवान, सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अनक राज भोग बड़ियाई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी सोभा तनमंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। साध संग प्रभ देहो निवास, सर्ब सुख नानक प्रगास। सलोक सरगुण निर्गुण।

तब कह ते होता, जब धारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चेहन ना जापत, तब हरख सोग कहो किसह व्यापत। जब अपने आप पार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत भरम। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करना हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी। जब एक है हरगमा पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय, तब शिव सख्त कहो कित ठाय। जब आप है आप अपनी जोत तरह, तब कमन निडर कमन कत डर। अपन चलत आप करना हार, नानक ठाकुर अगमा पार। अविनाशी सुख अपना सना, तह जन्म मरण कहो कहा बिना सना। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो के सोए। जब अवगत गोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप ही अचरजा, नानक अपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसह भूख कवन तृपतावै। करन करावन करना हार, नानक करते का नाहि सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्ब कला पह परबीन, तह वेद कतेब कहा को चीन। जब अपने आप उरतारा, तो सगन अपसगन कहा बिचारा। जह अपन ऊच अपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही अचेरा। बिस्मन बिस्मरहे बिस्माद, नानक अपनी गत जन हुआ। आप जह शल छेद भेद समाया, ऊहा किसा व्यापक माया। आपस कौ आप आदेस, तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंता किस लागा चिंता।

कोउ नरक कोउ स्वर्ग बंशावताल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तो नानके कै जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दोहो पाख का पह तनी उनकी सोभा उनहु बनी आपह कौतक करा आनंद चोज आपह रस भोगन निर्जोग जिस पावै तिसापन नाए लावै जैस पावै तिस खेल खिलावै बेसमार अथाह अगनत अतुलै।

0: जात में जोत, जोत में जाता या कलकला भरपूर है या। तू सच्चा साहिब सिफत सवालो जिनकी तिस पार पया।
1: ओ नानक करते किया बाता जो किश करना।

तेरी अनक करह हर पूजा जी तब तापह जपह बेंता तेरे अनेक पढ़ बो सिमरत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत से

पढ़ पढ़ की जाने। जब उद कर करा करता रा प्रजा धरत तब देह पारा। जब यहाँ कर करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तरसब हूँ।

आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभ ताका मूड उचार।

दोहरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्याए है संत अंत लहंग मुक्त फल पावहंग भगवंत। दोहरा काल पुरखी देह मोह कोटक बिस्न महेश कोटिंदर ब्रह्मा कित राक्षस क्रोर जलेस। दोहरा

प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां चंडे पुंगे जुगो जुग अटल।

सुखमूर्तनाम निरंजन काया कायाकार सत्य मन संतोख उपजय दिन के विचार दीदी मंगे सहसा गुण स

मन में है चित वो चितवनी, उद्यम करो उठनी। हर कीर्तन का आहरो, हर दिहो नानक के मी।

चार श्लोकाना श्लोक भीमहले पहले के लिखे तुम्हे असरा जी की तुम्हें श्लोक महला पहला बलहारी गुर अपने दिह